0: स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने
1: जी।
0: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
1: तो लीजिए सुनिए।
2: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
3: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
3: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
3: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
5: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
3: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
6: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
7: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
3: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
4: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।

0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
2: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
3: हाँ।
2: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
4: आग का गोला?
2: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
3: सूरज।
2: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
5: बहुत आसान पूछते हो।
2: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
5: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
2: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
3: हाँ।
2: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
5: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
2: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है,
6: वो तारा होता है।
2: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक,
6: वो रात और दिन भी बनाता है।
2: एकदम सही एकदम सही,
5: वो हमें धूप भी देता है।
2: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
5: धूप से हाँ। अच्छी बात भी होती है।
2: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
5: विटामिन डी।
2: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
5: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
2: हाँ हाँ बिल्कुल,
5: पेड़ों को खाना भी देता है।
2: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा, इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
5: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
2: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
5: हाँ।
6: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
2: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
5: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
2: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
5: वो तेज चलती है, जो हम लोग वो भी तेज चल रही है।
7: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
2: ना।
7: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
2: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
5: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
2: बहुत बड़ा होता है
7: और हमें छोटा लगता है आसमान।
2: हम क्योंकि कहीं
5: दूर होता है इसलिए
2: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
5: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
2: हाँ
7: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
2: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
3: सर्दी।
2: ओह ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी?
5: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
2: हाँ।

0: शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला लेकिन,
1: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है,
1: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके,
1: धरती काटे चक्कर इसके
0: लगे ये चलता जाता है,
1: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
1: सर्दी गर्मी बनते इससे
0: ये दिन रात बनाता है,
1: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मुझे कर पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना, जल्दी आना।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊं कि नहीं आऊं?
2: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ? अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: मुझे
0: डर जाती
2: है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: 100 हो जाएंगे, 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग
6: सुनते प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक ए दिल से दिल तक सफर रे मु अछि मोनालिसा आपण मनक साथी रे काश्मीर ठारु कन्याकुमारी पर्यंत मो देशर कहानी प्रत्येक कानरे गुंजरित हुए इति पवन कहे स्वदेशर कहानी विभिन्नता भितर एकदशा जे मो देशर प्रतिछवि प्रत्येक हृदय रही देश प्रेम कहानी ए देश प्रेम भितर भरी रही मो देशर स्मृति आ गौरव से स्मृति रे लुचि रही आम भावना आ गौरव रे लुचि रही आमर परिचय तबे चालंतु से देश प्रेम कहानी को नहीं आरंभ करिछु मो देश

0: আজির দিনটি আরম্ভ করিবা পূর্বরু আজির অনুচিন্তা জীবনের অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা আসিব, কিন্তু সে ঝড় ঝঞ্ঝা ভিতরে নিজে খুশি রহিবার পন্থা বা উপায় আপন মানে খোঁজি নিয়ন্তু। দেখিবে জীবনটি আহুরি সুন্দর সরল হয়েযিব। আও কিছু ক্ষণ ভিতরে আপন মানে শুনি পারিবে সমাচার হিন্দিরে, যাহাকি রিলে করি প্রচার করিব আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রর। বর্তমান পাই শুনছন্তি 107.4 আকাশবাণী এফএম রেইনবো কাটক দিল সে দিল তক। দিল সে দিল তক রে দেব মিত্র আছে আপন মানঙ্ক সহিত।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा

गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रेनबो का अटक दिल से दिल तक रे। हाँ आओ बस आज ही दिन अपेक्षा काली आम समस्ते मिसी प्रभु देवस्नान पूर्णिमा देखिबा एवं आज श्रीमंदिर महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं अन्य देवता मानंको स्नान मंडप को नेबापाई समस्त प्रस्तुति करा जाय थाए। हाँ देवी सुभद्रा एवं बलभद्रंकर सहित तीनि मूर्ति सहित चतुर्था मूर्ति सुदर्शन समस्ते स्नान मंडप को आसी थांती एवं एही लीला देखिबा को एही नीतिकांति देखिबा को समस्त भक्तगणंकर समागम हे थाए। हाँ काली अपलक नयनरे भक्तवृंद चाहि रहिबे जगार आखि को स्नान मंडप रे 108 जल रे स्नान करिबे कालिया। हाँ एवं एहा परे दियमानंकु गजानन बेसरे सज्जित मध्य करा जाय थाए एवं साधारणतः वर्षरे थरटिए श्री जगन्नाथ तांक भाई भौनी का सहित ए स्नान मंडप रे आसे स्नान करी भक्त वृंद को दर्शन देई थांते। हाँ जल स्नान करी थांते महाप्रभु एही समय रे तांको मंत्र स्नान भी करा जाए। बस काली तो देवस्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा समस्ते अपलक नयन रे जगांकर स्नान देखिबा पई अपेक्षा करथिबे। सतरे से भाव विनतिया ठाकुर भक्त आगरे सीए सब बेल पई हार मानी छांती भक्त को कोळेइ नबा पई से सब समय रे प्रस्तुत रुहंती से बड़ ठाकुर से हम समस्त प्रिय ठाकुर कालिया ठाकुर।

सुनिश्चित अपने वाणी देवो मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कट दिल से दिल तक रेन दिल से दिल तक रे मॉर्निंग अपडेट को निकी देवो मित्र हाजिर हो जाई छी। हां जदी पानी पाग देखिबा ताले आज कटक शहर रे आकाश टिके मेघाचन रहिबा सह दिन रे केतेक स्थान रे हल्का वर्षा एवं वज्रपात हेबार संभावना रही छी। सर्वाधिक तापमात्रा प्राय 34-36 डिग्री रहिबा एवं सर्वनिम्न तापमात्रा 28 डिग्री सेल्सियस रहिबार एवं आर्द्रता अधिक थिबारो गरम अनुभूत हेबो। आउ जदी ट्रैफिक अपडेट देखिबा ताहले रविवार हेतिबारु साधारणतः यातायात चाप टिके कम रहिबो। तथापि बादामबाड़ी बस टर्मिनल हो कि चंडी छक हो दोलमुंडी हो कि जोब्रा ब्यारेज हो ए अंचल रे सकाळ एवं संध्या बेला रे किछि किछि समय रे भीड़ मध्य देखा जाय पारे एवं बरसे समय रे आपण माने सावधान ने गाड़ी चलांतु। ट्राफिक रे प्रतिटी रूल एंड रेगुलेशन को मानंतु एवं घर बाहरिबा समय रे निजर हेलमेट बिल्कुल भी भूलंतु नहीं एवं फोर व्हीलर ड्राइव करिबा समय रे निजर सीट बेल्ट निहाती भाव रे बांधंतु। आउ हां नुआ सकाळ नुआ आशा और नुआ उत्साह नेकि आसे नुआ संभावना।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक। दिल से दिल तक कौन, दिल से दिल तक हृदय मित्र अच्छा आपणक सहित समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी सतटा बाजी 54 सेकेंड। आओ हाँ, आज आपण मैंने आम केन्द्र कौन कौन कार्यक्रम शुणीपारे से विषय में आपको जन रखुच्छी। आपने शुणीपारे आमर स्वास्थ्य सकाल 7:10 आज विषय रही वार्धक्य परिस्रा जनित समस्या। ए विषय आलोचना करेंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत साहू। एवं शुभ सकाल आपने शुणीपारे सकाल 7:25 मॉर्निंग मेलोडी सुनिपारे सकाल 8:30 एवं डायल इन लाइव चिट चैट सकाल 9:00 और 5:00 एथिरे निर्धारित विषय आपण माने फोन माध्यम रे निजर मतामत शेयर करिपारे। रेनबो एसएमएस सकाल 10:00 रही मन की बात शीर्षक भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य उद्बोधन सीधा प्रसारण दिन 11:00 रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली पर उद्बोधन ओडिया भाषातर शुणीपारे आम केन्द्र किछि कथा किछि गीत सुनिपारिबे दिन 12:00। आज चर्चा रे दिन 10:00 निर्धारित विषय रे एसएमएस बा व्हाट्सएप जरिया रे आपण माने निजर मतामत रखि पारिबे। अपरन्न 2:45 शुणीपारिबे पूर्ण ओडिया कथाचित्रर गीत। अपरन्न 3:00 शुणीपारिबे मो देश सुरिला आफ्टरनून शुणीपारिबे। अपरन्न 4:00 एवं प्रायोजित कार्यक्रम लंबे रहिछि आपण मानंक पई 4:50 रे गोस्वामी तुलसीदास को विरचित श्रीरामचरित मानसर 62 भाग शुणीपारिबे संध्या 6:10 रे इंग्लैंड लंडन स्थित लॉज क्रिकेट साउंड ठारे भारत एवं ऑस्ट्रेलिया मध्यरे हेबाकु थिबा आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप रो प्रत्यक्षदर्शी धारा विवरणी हिंदी एवं इंग्रजी भाषा रे रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी दिल्ली रो संध्या 6:30 रो 7:00 संध्या 7:15 रो 7:58 एवं राति 8:30 रो 10:45 पर्यंत अथवा खेल शेष होबा पर्यंत राति 7:00 शुणीपारे प्रायोजित कार्यक्रम कथारे कथारे गीतरे गीतरे राति 8:00 मन की बात शीर्षक भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य देथवा उद्बोधन ओडिया भाषातर शुणीपारे। रेनबो एसएमएस आपण माने शुणीपारे राति 10:45।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर
1: नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंते महेंद्र कुमार माझी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पूर्वाह्न 11:00 बेले आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम उद्बोधन देबे। एहा मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 135वां संस्करण हेबो। एही कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल आप उपलब्ध हेबो। प्रधानमंत्री उद्बोधन आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल ले सीधा प्रसारण हेबो। प्रधानमंत्री संबोधन पर आकाशवाणी एही कार्यक्रम आंचलिक भाषा प्रसारण करा जिवो। राति 8:00 आंचलिक भाषांतरण पुनः प्रसारण करा जिवो। श्रीजीवों पवित्र स्नान यात्रा आसंताकाल अनुष्ठित हेबो। पूर्व प्रस्तुति अनुसार श्रीमंदिर श्रीजीवों सर्वसाधारण दर्शन आज अपराह गोटाए पर्यंत बंद रहिब। स्नान पूर्णिमा पहंडी पूर्वरु दैतापति सेवकमाने महाप्रभुंकर बाहुट कंट और सेनापटा लागि नीति संपन्न करिछन्ते। सेनापटा लागि नीति श्रीमंदिर एक गुप्त नीति जो सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिछि। महाप्रभु श्रीजगन्नाथंक एही यात्राकु श्रृंखलित भावे समापन करिबा पई श्रीमंदिर जिल्ला और पुलिस प्रशासन पक्षरु व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्यरे महानदी जलकु नै देखादैतिबा विवादर समाधान लागि उभय राज्यर वैषयिक दल पक्षरु दियाजैतिबा रिपोर्ट ट्रिब्युनालले समीक्षा करा जाइथिला। उभय राज्यरे प्रवाहित महानदीर केउं स्थानरे केते परिमाणर पानी रहिछे तार रिपोर्ट प्रदान करिबाकु ट्रिब्युनाल निर्देश दैथिले। आसंता मास 11 तारीखें ट्रिब्युनालले परवर्ती शुणाणी हेबो बोली जणापडिछे। कलाहांडी जिले में एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित एवं सशक्त करने लक्ष्य रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आभास माध्यम रे केसिंगा स्थित कुल्लुपड़ा एमएसएमई पार्क उद्घाटन कर 48 एकर ऊर्ध्व परिमित स्थान में पार्क 10 कोटी टंका व्यय निर्माण कर द्वारा जिले में शिल्पायन और नव उद्योगी विशेष उपकृत हो पारे सरकार पक्ष देशव्यापी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान आज अनुष्ठित आसंता मंगलवार पर्यंत यह अभियान चलिबो। जन्मरु 5 वर्ष पर्यंत समस्त शिशुंकु पोलियो बुंदा दियाजिबो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु डाक्तरखाना गुडिक व्यतीत अंगनवाड़ी केन्द्र एवं विभिन्न स्थान रे शिशुमानकु पोलियो बुंदा दियाजिबा पई व्यवस्था करा जायछि। पोलियो बुंदा आज देइनथिबा शिशुमानकु स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वेच्छासेवी माने घरकु घर जाइ पोलियो बुंदा खुआइबे। राज्यरे चलिथिबा भोटर तालिका स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर अभियान आज शेष हेबो। राज्यर समस्त जिल्लारे परिगणना फर्मर डिजिटाइजेशन कार्य शेष पर्यायर पहुंचिछि। आसंता मास 5 तारिखें चिठा तालिका प्रस्तुत हेबो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

सुनिश्चित अपना मानते वो मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का टक दिल से दिल तक रे शो आरंभ हो जाए ची सुबह सकाल रा यस समस्त को गुड मॉर्निंग एंड आज जी तो संडे निहाते भाव रे समस्त को पाए टिके लीजी कोजी संडे निहाते भाव रे थी पा किंतु आमे आज एमिति जण को विषय रे कथा हा जहां को कहानी सब बल पाए आम हृदय रे एमती रही रही बबे कहीं गीत जिते भी शुणिले ना से नुआ लगे आवाज रे जो मधुरता अच्छे से मधुरता आगे सब दुख हार मानी जाए आवाज शुणिले एमती लगे एमती सिंगर आउ कही भी है पारे भली आउ कही एत सुंदर भाव गाई पारे हाँ जी आम को प्रेम पकेवा शिखे जहां आवाज शुणी आज भी अनेक किसी जिनस सहित आम जड़ित होकर रही था हाँ से कंठशिल्पी जनक होती अलका आग्निक 1966 मसीह कोलकाता जन्म नहीं अलका आग्निक छोट बड़ संगीत सहित जड़ित थे कि किसी वर्ष हम आम देखा पाउन एमती कौन होता अलका सहित मात्र 6 वर्ष बयस जी माँ ठार शास्त्रीय संगीत शिक्षा नहीं आकाशवाणी गीत गायबा आरंभ कर परे परे मुंबई रे संघर्ष और परिश्रम बॉलीवुड रो शीर्ष संगीत शिल्पी मध्य स्थान देखा अनेक किसी गीत अच्छे से गाई जहां आज भी श्रोता मान हृदय गुंजरित हुए हाँ 4 दशक रु अधिक समय धरी से भारतीय चलचित्र संगीत को समृद्ध कर आउर असाधारण अवदान पर 2026 भारत सरकार पद्म भूषण से सम्मानित कर राष्ट्रपति भवन से निजे उपस्थित हो सम्मान ग्रहण किंतु यही जीवन पछे केवल सफलतार कहानी ना गत किछि वर्ष धरी अलका एक दुर्लभ श्रवण समस्या सह लड़ी कर हाँ तथापि से हार मानि नहांती थरे भाविले जेते सुंदर आवाज रे गीत गाते जी गीत को शुणती आ जी गीतर ही बचते गीत जहां प्राण जिते सीता श्रवण शक्ति हर बसते कष्ट जीवन जमी गोटे शक्त धक्का दे हाँ किंतु कथार से कही कि मु धीरे धीरे पुणी फेरबार रास्ता खोजुचे आई दृढ़ता आम समस्त प्रेरणा हाँ पुरस्कार केवल जड़े व्यक्ति को मिलता सम्मान नुह परिश्रम संघर्ष और समर्पण उत्सव जमीक अलका अग्निक आज पद्म भूषण मिली भारतीय संगीत जगतर एक गौरवमय मुहूर्त होलका अग्निक हाँ यही सुर सम्राज्ञी आम गोटे जोरदार तालित हृदय निहाती बजे पारा सुस्थ जीवन निहाती भाव कामना करिबा कहीं आवाज रे जो मिठास एबे भी सुनिले ना हृदय प्रेम पड़ा बाध्य करे सुन था देव मित्रा सहित ट्यून कर रखी था 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का टेक दिल सी दिल तक।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा

0: से और पुलिस महानिदेशक साधारण दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
1: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा

0: नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बर।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेंजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के

0: बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ट्यून कर चुन्दे अपन माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक श्री ए मॉर्निंग रे मॉर्निंग मेलोडी को नहीं की दबो मित्र अच्छा अपन को सही तो सकल सकल किसी मेलोडियस धुन सुनो शी अपन को किंतु ए संडे रो सकल रे मने पड़ी चाहे पीला बेलर संडे कथा गोटे दिन स्कूल छुट्टी थाए स्कूल रो सब ड्रेस पत्र सही दिन ही हमको सफा करिवार थाए हां घरे तो मां कर दियंती सेत बेले हमको सफा करिवार टेंशन नथिला काहे कि ना सफा करिवार टेंशन आइरन करिवार टेंशन मां कर थिला और रविवार हेले आमे हमर लिस्ट काढी के बस जाउथिले कि आज कोन स्पेशल घरे खाइबा हबो रविवार तो बहुत जन घरे आयस हुए हाँ माँ मान बात पड़ जाती कहीं माँ मान रवि नारायण व्रत करते पा तो मजा ही मजा स्कूल न थाए स्कूल नो भाई मजा ट्यूशन भी पखापाखी सब बंद थाए रविवार दिन मान स्कूल छुट्टी सांग मान सहित खेल सतरे पिलादिन रविवार ना आज भी मन पड़ जाए ए व्यस्तबहुल जीवन भितर जेतबेले आमे थकी के घर को आसी जाऊ रविवार टा भी थका थका लगे कहीं किसी निजर काम करिबार थाए निजर ड्रेस सफा थाए निजर निजे रहुतबा घर को टिके सजाड़ीबार थाए निजर खाइबा पिबा बनेबार थाए ए सब भितर ना रविवार टा केमती केमती कटी जाए किंतु पिला बेले ए सब रो चिंता आम पाखरे नथिला ना कहले कि ना आमर चिंता करबा पई आमर बापा मा आम पाखरे रहुथिले किंतु धीरे धीरे जितेबाला आम बड़ हेले से संडे गुड़ा को बहुत मिस कले जो संडे रे आमे दिन तमाम खेलुले आमको घर लोक डाकी डाकी चाल टिके खरा बेले सोई पड़ किंतु ना आमे तंको नाकेदम करि दोथिले काहेंगे ना खरा गरम जहां भी हो सांग मान सहित खेलवा आम छाड़ नथिले किंतु एबे आमको कहीं सोइबा को डाकु नहांते किंतु तथापि काहेंगे केचने आखि लागि जाउछि आमको कहीं खाइबा को ढाकु नहांते किंतु निज हाथ निज पई रोसे करबा पई चली जाउछि सतरे पिला दिन रो संडे ठो ए संडे टा बहुत बदली जाइछे ना।

सुनिछन्ते अपन माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक कोन दिल से दिल तक रिश हो चाले छे रेनबो एसएमएस रा चलन तो देखिबा नेक्स्ट एसएमएस के कोठ लिखि पठी छन्ते एवं कोन लिखि पठी छन्ते एही एसएमएस समक को आसु छि सेक्टर 7 सीडीए रु मार्केट नगर रु कटक रु लिखु छन्ते प्रेम जी कम्युनिकेशन रु प्रेम जी भाई एवं लिखि छन्ते गुड मॉर्निंग ऑल जय जगन्नाथ जय हिंद अपन को मध्यम वेरी गुड मॉर्निंग सहित से लिखुंट कि शुणा को चाहते थानेदार चलचित्र जीना है तो हंस के जीव एवं गीत को से डेडिकेट कर स्पेशली मते एवं बंधु दिवाकर सुबल भोई समस्त आर्टिस्ट मान सब स्टाफ मान समस्त श्रोता मंडली को निहाते भाव में ब्यूटीफुल से गीत मुझे श्योर शुणी चलतु परवर्ती एसएमएस आड़ को एसएमएस आसुची जगत सिंहपुर लिखिंट आमको मुन्ना पंडा एवं से शुणा को चाहते हम चलचित्र जुम्मा चुम्मा दे दे एवं डेडिकेट कर समस्त लिसनर्स को समस्त आर्टिस्ट मान आकाशवाणी काटक को डेडिकेट कर स्पेशल डेडिकेट कर टुना भाईना राजेश नायक गरीब खान बासंती खटुआ शहीद नगर भुवनेश्वर बासंती खटुआ को डेडिकेट कर भाव आपण मन पसंद गीत मुझे शुणी चलत बिल्कुल भी लेट नक शुणी ना बैक टू बैक ट्रैक को स्टे कनेक्टेड एंड स्टे म्यूजिकल।

सो चलिए रेनबो एसएमएस रे आपण माने ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन भोकाटक दिल से दिल तक चलंतो देखबा परवर्ती एसएमएस के कोठु लेखि पठी छंती एवं कोन लिखि छंती एही एसएमएस आसुची मंगला बाजार रो जमादीपुर नुआ पाटणा तिगिरिया कटक रो लेखि के पठी छंती लीजा रानी कल्याणी रश्मि सुरेखा मामी लता खटुआ एवं लिखुचंती गुड मॉर्निंग टू यू समस्त श्रोता मानंकु मध्य गुड मॉर्निंग एवं समस्त स्टाफ मानंकु गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो एवं सुनिबा को चाहि छते कुमार सानु एवं अलका अग्नि को अकाउंट रे घूंघट की आर्ट से दिलबर का ए ब्यूटीफुल से गीत हम अपन को शो सुनेबी एवं डेडिकेट करु छंती लक्ष्मी प्रिया रोजालिन दिव्या दिव्या चंदा एवं विश्वरंजन बासंती माई एवं समस्त श्रोता और स्टाफ मानंकु श्योर आपनको मन पसंद रे गीत देव मित्र आपनको निहाति भापरे सुनैबो चलंतु परवर्ती एसएमएस आडको बढेबा कि एवं कोठु लिखि चंदी एवं कोन लिखि चंदी एही एसएमएस रे आसुची ओरिलो संखतेरेस रु पठी चंदी आम पाखो को सुकांत साहू एवं सुभासिनी साहू क्वीन सृष्टि सारधा स्मृति सिया रश्मि रंजन लिखि चंदी एही मेसेज टी एवं से सुनिबा को चाहि जंती जेकोनसी गीत मो मन पसंद रे निहाति भाबरे गुड ब्यूटीफुल सा गीत आपन को डेडिकेट करी सुनी देबी ताले चला तो बिल्कुल भी लेट ना करी सुनिनो बा बैक टू बैक ई दुटी ब्यूटीफुल ट्रैक स्टे कनेक्टेड एंड स्टे म्यूजिकल

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और

0: शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किट बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया किट बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े

शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती

देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपए का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं।
अंधविश्वास से विश्वास तक की ये

यात्रा आसान नहीं होती और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे, कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है, इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की

सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने

की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से।

जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों

0: किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हां, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे

वेलकम बैक टू कुछ म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेडियो हम सफर सागर अच्छे आपन को सहित सो चलची किछ कथा किछ गीता

알지 기지 같아 기지 기타 프린스의 지번은 어때요? 마티버리 केबे सुखी जाए केबे फाटी जाए केबे क्लांत होइ पड़े किंतु आशार वर्षा आसिले पुणि थरे सबुज होइ उठे सेतिपई जीवन रे जेते कष्ट आसु आशार मेघ को केबे ले हराई बि नै कारण प्रत्येक सुखिला माटी पई गुटिए वर्षा निश्चिंत अपेक्षा करिथे केबे ध्यान दिछन्ति कि वर्षा हेतिबा समय रे मन टिके अधिक भाव प्रवण होइथे पुरुणा बंधुक कथा मन पड़े छाड़ी आसीथिबा घर कथा मन पड़े आउ केबे केबे सेई लोकक कथा मन पड़े जे आज आम पाखरे नहांती वर्षर ए अद्भुत शक्ति अछि से मनर मौलिक धोई दैथे आउ स्मृतिर झरका को खोली दिए।

वेलकम बैक टू कुचन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे रेडियो हम सफर सागर अच्छे आपन को सहित सो चलची किछ कथा किछ गीत फ्रेंड्स मनर कथा सब बेले शब्द रे प्रकाश पाए नहीं केबे से चा कुबरु उठितिबा बाष्प रे लुचि रहे तो आउ केबे छर पाखरे बसी वर्षा देखिबारे तो आउ केबे रातिर नीरवतारे मन चाहे किसी समय निज पाई किसी समय स्मृति सह किसी समय स्वप्न सह आउ वर्षा दिन गुड़िक सही सुजोग निहति भाव में नहीं आसती गाँव वर्षार दृश्य आज मध्य अलग प्रकार छपर उपरे वर्षार टुपटाप शब्द अंगणारे चमुथिबा पानी आउ दूर क्षेत्र आसुथिबा भिजा माटीर महक सही दृश्य थाए एक अपूर्व आपणापण ସହରର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ମନର ଏକ କୋଣରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ମନ ଅଜାଣତରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଯାଏ

वेलकम बैक टून कुचुल म्यूजिकली होर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे रेडियो हम सफर सागर अच्छे आपन को सहित सो चलची किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स जीवन रो सबठरो सुंदर कविता बोध हुए प्रकृति लिखी थाए मेघ तार शब्द वर्षा तार सुर माटी तार अनुभूति आउ मन तार पाठक आज जदि बाहर वर्षा होची टिके समय बाहर करंतु छरका पाखर बसंतु मेघ को देखंतु माटी रो महक को नियति बारे अनुभव करंतु आउ हां निज मनर कथा सुनंतु हुए तो सेठरे आपण निज जीवन रो कोनोसी सुंदर उत्तर खोजि परिबे मेघ आकाश रे बासे माटी वर्षा को अपेक्षा करे आउ मन स्मृति को सेमति साहित्य रखे तो फ्रेंड्स एडी शेष करछु आज रो किछ कथा किछ गीत प्रोग्राम।

0: ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ ବୋକାଟାକ୍ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତାକ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲିକରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ବିଶାଲ ଶର୍ମା। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक

0: ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanchodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. He noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. This time, diverse yoga events were held at over 2,500 locations across the globe. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India topped the medals tally.
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।

वेलकम बैक टू उनको चंद म्यूजिकल यूर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकाटक देचे लेल तकरे रेडियो वन सफर सागर छ आपन को सहित सो चलची आज ही चर्चा रे आ आज ही चर्चा रे मु आपन गोटे ब्यूटीफुल क्वेश्चन करथली कि आपन का को निज जीवन रो नायक बोली भावंती आ कोन पाई भावंती मो पकरे दुई मेसेज ऐसी पहुंच जाइछि देखिबा के मेसेज करछंती आ कोन लिखछंती मेसेज करछंती राजेंद्र रोना नुआ गारु से लिखछंती गुड आफ्टरनून टॉपिक विषय ये लिखछंती कि मो जीवन रो नायक विश्व गुरु भगवान श्री कृष्ण श्री भागवत गीता रे सब उपदेश देछंती बहुत बढ़िया मेसेज टी लिखछंती राजेंद्र रोना आ तांको पई भगवान होछंती सब किछि बहुत बढ़िया मेसेज टी भगवान को प्रति अगाढ़ विश्वास रही बोली से उल्लेख करछंती बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र नना नुआ गांव आपनकर मेसेज पे परवर्ती मेसेज टी करछंती राजेश भुवनेश्वर रु से लिखिछंती तांको बापा जयंत पति तांको पई सबु किछि बहुत कष्ट सही से तांको पाठ पढ़ाई थिले एवं से बे निज गोड़े ठिया हे निज लक्ष्य स्थल रे पहुंच परछंती आ मेसेज टी ए करछंती कि बापा सबुबले सुस्थ रुहंतु भलरे रहंतु ठाकुर तांको सबुबले भलरे रखिथंतु बहुत बढ़िया मेसेज टी करथिले राजेश भुवनेश्वर रु तो फ्रेंड्स राजेश को कथा को नहीं मु एटी कहबी कि बापा बोध हुए मां को भली निज स्नेह को बारंबार प्रकाश करि परंती नहीं किंतु तांको प्रत्येक चिंता प्रत्येक परिश्रम प्रत्येक त्याग पछरे लुचि रहित है परिवार प्रति असीम भल पाइबा संतानर छोट छोट खुशी पाई से निजर बड़ इच्छा को मध्य त्याग कर दिंते आउ आमे जेते बले छोट थाउ बापा को आंगुड़ी धरी चालीबासी को बड़ हला परे बुझी पारु जे केवल आमको बापा चालीबासी के नथिले जीवन रो कठिन पत्रे आगो को बढ़िबार साहस मध्य देथिले तांकर कठोर कथा भितरे मध्य थाए अनेक स्नेह अनेक आशा आउ अनेक स्वप्न तो फ्रेंड्स आपनको आपन काहाकू निज जीवन रो नायक बोली भावंते आउ कहीं भावते जदि आपर बहुमूल्य मतामत मो सहित सेयार करने को चाहते लिखुद मार्स गोटे स्पेस दिं कौन लिखा चाहते लिखिक पठाई दिं 9495963210 को आपत मत ह्वाट्सअप करेंगे आम ह्वाट्सअप नंबर 8895254200 क्वेश्चन टी आउ थे कही रखुच क्या निज जीवन रायक भूली भावती कौन पाई भावती स्टे ट्यून्ड

वेलकम बैक टू कुछ म्यूजिकल यू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दैचा डेल्टा के रेडियो हम सफर सागर अच्छी आपन सहित सो चलची आज चर्चा रे आउ आज चर्चा रे मु आपन गोटे ब्यूटीफुल क्वेश्चन करथिल कि आपन काहाकू निज जीवन रो नायक भली भावंती आउ कोन पाई भावंती

पाखे आउ दुटी मेसेज आसी पहुंचाई देखा मेसेज टी किए कर लिखिंट मेसेज टी कर सोमनाथ साहू जीकरण पट्टामुंडे केन्द्रापड़ा से लिखिंट नमस्कार एंड जय जगन्नाथ सागर भाई आपण जय जगन्नाथ जनाऊँ गुड आफ्टरनून कहते कि मिड डे ट्रांसमिशन बहुत बढ़िया लगुच सो से सब आरजे मान स्पेशल थैंक्स जनाई आ टॉपिक विषय यह लिखिंट कि सर मु बापा को मो जीवन ठार भी बहुत भल पाए मानि आसुच बिकज गोटे कथा मो बापा मत शिखाई कि कठिन अधवसाय धैर्य थिले सक्सेस केबे हेले भी कौन प्रतिबंधक बाधा दे पारे नि सक्सेस निहति भाव आसी था से लिखिं सो मु मो बापा मोराल लेसन को ओबे कर आज मो लाइफ रे बहुत सारा सक्सेस पाई एंड मध्य बहुत खुशी रे अच्छे फादर एंड मदर हेले नेचुरल गॉड सो वी वुड ओबे देयर गुड एडवाइस बढ़िया मेसेज टी लिखिं सोमनाथ साहू जिगरण पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर ब्यूटीफुल मेसेज परवर्त मेसेज टी कर आभा सेन रोहित सेन राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट रू से लिखिं गुड आफ्टरनून भाई जय जगन्नाथ टाटा स्टील परिवार तरफ ओडिशावासी को प्यार भरा नमस्कार आपण बहुत बहुत नमस्कार भाई से लिखिं हापी संडे भाई आज आम ऑफिस रे छुट्टी अच्छी से आम रूम रे 27 जन स्टाफ आपण प्रोग्राम शुणुचु टॉपिक विषय यह लिखिंट कि भाई जीवन मोर जीवन रे रियल हीरो आम बापा दुनिया रे जदि सबुठ किए भल बापा से बहुत दुख कष्ट सही आम मान को बड़ कर निजे उपास रही आम पेट को दाना जगै से जने महान व्यक्ति आई लव यू बापा बहुत बढ़िया मेसेज टी लिखिंट आभा सेन रोहित सेन राजकुमार भरद्वाज विशाल श्रीवास्तव मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट रो तो फ्रेंड्स मुझे कह चाहे कि आम कथा एमती जड़े व्यक्ति विषय जहां ऋण आम के सुझी पारा ना से हूं आम पिता और माता आम पेरेन्ट्स कहजे जी आम प्रथम जीवन प्रथम शिक्षक प्रथम बंधु प्रथम नायक नायिका हाँ बापा पूर्व तो मुझे किसी समय पूर्व कहती माँ शब्दी छोट कि यार अर्थ बहुत बड़ आम कथा कह शिखा पूर्व माँ आम मन कथा निहाती भाव बुझी था आम दुखर थी मन व्याकुल खुशी थे मुहर हस फुटी उठी था मार भल पाइबा एमती एक भल पाइबा जो थे ना कौन सर्त थाए ना कौन स्वार्थ थाए से निजे भोकिला रही पारती कि संतान को भोकिला रही भी दिखती ना से निजे कष्ट सही पारती कि संतान आखिरे लुह देखी पारती ना आउ से ही होती आम बापा माँ निहती भाव तो फ्रेंड्स आपण किसी अनुभूति जदि थी तेज मो सहित सेयार करें क्वेश्चन हूँ आप निज जीवन नायक भूली भावती आउ कौन भावती बहुमूल्य मतामत मो सहित सेयार करने को चाहते लिखते मार्च गोटे स्पेस दिं कौन लिखा चाहते लिखे पठाई दिं 9495963210 को आपड़ मतलब ह्वाट्सअप करेंगे आम ह्वाट्सअप नंबर 8895254200 Stay tuned.

0: लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
1: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
1: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandedh, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
1: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
0: हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ. हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई. आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे.
1: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है. दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है. मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया.
1: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है. वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है. भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है. वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है. इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना. टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं. भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है.

0: scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 international of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in seven consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's sixth goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी

0: की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में

0: पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परम

0: परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर

0: लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इतने कार्यक्रम सुनते आकाशवाणी दिल्ली ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे विज्ञापन विरती पर।

0: संस्कृति मूल्य
1: नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा मुख्य संवाद स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित क्रूज क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण प्रतिरक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करिछि कहिले प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में योग दिवस सफलता उपरे कले आलोकपात राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अधीन आसंता मंगलवार पर्यंत राज्य में जारी रहिबो पोलियो बुंदा प्रदान अभियान आसंता काली स्नान पूर्णिमा पूरी श्रीमंदिर चूड़ांत पर्यायर पहुंची प्रस्तुति एवं सक्रिय मौसुमी वायु प्रभाव में राज्यर दक्षिणांचल आसंता तीन तारीख पर्यंत वृद्धि पाइब वर्षा परिमाण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी मन की बात 135वां संस्करण में देशवासी संबोधित कर देशर सुरक्षा आत्मनिर्भरता जनभागीदारी परिवेश सुरक्षा एवं भारतीय संस्कृतिर प्रसार उपर आलोकपात करिछन्ति। प्रधानमंत्री कहिछन्ति जून मासरे स्वदेशी युद्ध जहाज आईएनएस दुनागिरी संशोधक और अग्रय भारतीय नौसेना में सामिल होवा सहित मेड इन इंडिया C-295 विमान प्रथम उड़ाण होइछि। श्री मोदी कहिछन्ति डीआरडीओ द्वारा

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाएगी। बस ट्रक एवं आंबुलांस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाएगी, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम होइजिवो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही कि जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कोनोसी परिवर्तन करा जाय नाही। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ।

0: उठाई पारिबे, जहाद्वारा एही जान गुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।
1: खरा दिने अंशुघात प्रति सतर्क रुहन्तु।
2: अंशुघातर लक्षण गुड़िक हेउछि प्रबल झाल बोहिबा, मुंड बुलाई अंधार दिसिबा ओ बांति लागिबा, प्रबल शोष लागिबा, मांसपेशी टाणी हेबा, अचेत हेबा किंबा बात मारिबा।
1: अंशुघात निमन्ते पूर्व सतर्कता गुड़िक हेउछि सकाळे किंबा उपर बेला खरा कम थिबा बेले बाहरकु जांतु। बाहरकु जिबा पूर्वरु जथेष्ट पानी पियंतु। हालुका रंगर ढिला पोशाक, छत्ता ओ जोता व्यवहार करंतु। खरारे कठिन परिश्रम करंतु नाही, अधिक दूर चालंतु नाही, मझिरे मझिरे छाईरे विश्राम नियंतु।
2: अंशुघातर प्रतिकार गुड़िक हेउछि रोगी को खोला ओ थंडा जगह को नेई ओआरएस किंबा चीनी लुणा सर्बत अथवा साधा पानी पियंतु। पोशाक गुड़िक यथा संभव खोली दियंतु, मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़ा रे पोछंतु। रोगी को पंखा, कूलर किंबा एसी पवन रे सुवाई दियंतु। अवस्था रे उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किंबा एम्बुलेंस डाकंतु।
1: वयस्क तथा असुस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिला को पाई अंशुघातर आशंका अधिक रही थाए।
2: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।
0: जीएसटी काउंसिल टैक्स को आहुरी सरल कर देछि। सरकार सीमेंट उपरे जीएसटी दर 28% रु ह्रास करि 18% करि देछन्ते। टैक्स ह्रास द्वारा घरोई एवं व्यावसायिक प्रोजेक्ट उपरे चाप कम हेबार संभावना रहिछि। एहिपरि मार्बल एवं ट्राबोटिन ब्लॉक उपरे टैक्स रो दर 12% रु ह्रास करि 5% करि दिया जाइछि। जेबेकि ग्रानाइट ब्लॉक उपरे पूर्वरु 12% तुलनारे एबे केवल 5% जीएसटी लागिबो। एहा सहित बाली चुनर ईटा ओ पत्थर काम उपरे मध्य टैक्स रो दर 12% रु ह्रास करी 5% करि दिया जाइछि।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के टिके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले

वेलकम बैक ट्यून कुछ म्यूजिकली हो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बोकाडक देचे दिल तक रे रेडियो हम सुपर सागर अच्छे आप सहित सो चलची मो देश आ मो देश रे आज आम कथा होचे संस्कृतिर सेतुरे एकता फ्रेंड्स आम देश रे दीपावली हो कि ईद हो ख्रीष्टमास रज पोंगल भली अनेक पर्वपर्वाणी पालन करा जाए पर्व अलगा हो पारे परंपरा अलगा हो पारे किंतु खुशी बांटिबारे जो भावना सबुटी समान रही थाए संस्कृति आमको केवल निजर परिचय दिए ना यह आमको सम्मान देवा मध्य शिखाए भारतीय संस्कृति मूलमंत्र हेउची वसुधैवं कुटुम्बकम् अर्थात समग्र विश्व हेउची गोटिए परिवार ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ସହଯୋଗ ସହନଶୀଳତା ଆଉ ଭାଇଚାରାର ପଥ ଦେଖାଏ।

तो फ्रेंड्स भाषा अलगा भावना गोटे परंपरा अलगा किंतु परिचय गोटे संस्कृति सेतुरे गोड़ा यह संपर्क भारत एकतार एटा हूँ सब बड़ शक्ति शेष करो देश प्रोग्राम मो पर जोड़ी आरजे सुदीपा जे आफ्टरनून को करेंगे पूरा सुरला टिल देन टेक केयर हैव ए नाइस डे सागर इज साइनिंग अप स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का दिल से दिल तक।

Hello, dear friends. Welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Today, I am talking about workplace conflict management. कार्यस्थल में संघर्ष के नकारात्मक पहलुओं को सीमित करने और संघर्ष के सकारात्मक पहलुओं को बढ़ाने की प्रक्रिया है। संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य संगठनात्मक सेटिंग में प्रभावशीलता या प्रदर्शन सहित सीखने और समूह परिणामों को बढ़ाना है। उचित रूप से प्रबंधित संघर्ष समूह परिणामों को बेहतर बना सकता है। अधिकांश पदों पर मजबूत संघर्ष प्रबंधन कौशल एक फायदा है, क्योंकि संघर्ष समाधान से बचना लगभग असंभव है। असहमत होना और असहमत होने पर असहमत होना वास्तव में स्वस्थ है। पूरी तरह से संघर्ष को समाप्त करने से अपनी खुद की समस्या पैदा होगी। हमारे पास विभिन्न प्रकार की राय नहीं होगी और त्रुटिपूर्ण योजनाएं और नीतियों को पकड़ने और सुधारने का कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन मिसकम्युनिकेशन या पारस्परिक तनाव आसानी से आक्रोश या इससे भी बदतर हो सकता है। संघर्ष के हल करने और बढ़ाने की अनुमति देने वाले संकल्प अंततः उत्पादकता और नुकसान को कम करेंगे और कर्मचारियों के मनोबल को नुकसान पहुंचाएंगे। यही कारण है कि नियोक्ता संघर्ष के प्रबंधन और प्रसार के लिए कर्मचारियों की तलाश करता है। संघर्ष भी संस्था की एक स्वाभाविक समस्या है, क्योंकि जहां बहुत से विचारशील लोग काम करते हैं, वहां मूल्य भावनाएं, आशाएं और उनके स्वयं के हितों के टकराव की संभावना होती है। फिर भी एक सुचारू प्रणाली के लिए आवश्यक है कि इस तरह के संघर्ष को कम करने, नकारात्मक प्रभाव से बचाने के उपाय करने और कुछ नियोजित नीति अपनाने के लिए प्रयास किए जाए। संघर्ष एक मतभेद है। उदाहरण के लिए, अक्सर श्रमिक उच्च मजदूरी की मांग करते हैं और प्रबंधन उनकी मांगों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। फिर श्रमिक और मालिक के बीच संघर्ष होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हड़ताल हो सकती है। यह स्वाभाविक है कि तनाव और टकराव की ये स्थिति बिना किसी देरी के इस समाप्त करने के प्रयास के प्रति अशान्वित है, ताकि व्यवसाय बढ़ता रहे। एक अन्य विचारक के अनुसार, संघर्ष दो पक्षों के बीच विवाद, असहमति या संघर्ष है। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य पक्ष के बीच एक जानबूझकर हस्तक्षेप है। इस प्रकार संघर्ष समन्वय के लिए एक बाधा है, एक विनाशकारी अप्रियता है। जैसे कि हमने स्थापित किया है कि पेशेवर का उद्देश्य संघर्ष से बचने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे प्रभावी ढंग से हल करना चाहिए। संघर्ष के कई कारण हैं, या किसी भी परिस्थितियों में हो सकती है। ये अक्सर आकस्मिक या अचानक होते हैं। ये व्यक्ति, विभाग या समाज के स्तर पर भी संभव है। इसीलिए विवाद या मतभेद स्वाभाविक है जहाँ कई लोग कार्यरत है। बिना किसी देरी के इस तरह के संकट को संभालना और संघर्ष के दूरगामी प्रभाव से संस्था को मुक्त रखना प्रबंधन की चुनौती है। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। spice.lamhe.vanilla। संघर्ष के कारण कुछ ऐसे हैं: विशेषज्ञता द्वारा विशेषज्ञों का बढ़ता महत्व, आपसी सहयोग का अभाव, दूसरे के उत्पाद

उत्पादन को कम करने के लिए एक वर्ग की अक्षमता, उपकरण की निर्धारित उद्देश्य और उपलब्धि के बीच अंतर, अधिकारों का अनुचित प्रदर्शन, उच्च अधिकारियों की योग्यता का विनाश, सही नेतृत्व गुणों की कमी, व्यक्तिगत कड़वाहट, रिश्तों का टूटना, कमजोर संचार प्रणाली, मूल्य और मूल्य का भिन्नता, संगठन में उपेक्षा, सुविधाओं की अनुपस्थिति, प्रबंधन का अमित्र व्यवहार, संस्था की एक श्रमिक विरोधी नीति, अधिकारों और कर्तव्यों की अस्पष्टता, निर्दिष्ट अधिकारों की सीमा, अतिक्रमण, धार्मिक, क्षेत्रीय या जातीय भावनाएं, अधिकतम लाभ का एक दृष्टिकोण, ग्राहकों या श्रमिकों का शोषण, अनुचित मांगों का पूरा करने के लिए दबाव का तरीका, पर्याप्त जानकारी प्रवाह में बाधाएं, पद प्रतिष्ठा टकराव। स्पष्ट रूप से सहानुभूतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक संवाद करने की अनुकूल परिणाम पैदा होते हैं और पेशेवर रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। स्पष्ट, सटीक, लिखित और मौखिक संचार के साथ कई अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सकता है। दूसरों के बारे में नाराजगी जताते हुए कि वे पहले से ही जानते हैं, सोचते हैं या इरादा करते हैं, गुस्सा या बुरा हो सकता है। बहुत से लोग शुद्ध रूप से बहस करते हैं क्योंकि वे सुनना चाहते हैं। बस एक अच्छा श्रोता होना आत्मविश्वास को प्रेरित करने और अहद भावनाओं को हल करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अच्छे संचार कौशल का उदाहरण में शामिल है समस्याओं का त्वरित निराकरण, औपचारिकता पूरी करना, सक्रिय होकर सुनना, नेतृत्व, मध्यस्थता, पार्टियों के साथ बैठक, सही संचार, मोल भाव, अनकहा संचार, संवाद खोले, सकारात्मक व्यवहार सीखना, लिखित संचार, भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी की अपनी भावनाओं और दूसरों के भावनाओं को समझना और उन भावनाओं को अच्छी तरह से संभालने की क्षमता है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग दूसरों की जरूरतों की पहचान करने और उनसे मिलने, उनकी जरूरतों और भावनाओं की जिम्मेदारी लेने में अच्छे होते हैं। ऐसा करने के कुछ तरीके ऐसे हैं मेरे दोस्तों। दोस्ताना होना, विश्लेषणात्मक होना, भावनाओं को व्यक्त करना, समझौता, जिज्ञासा दिखा रहा है, माफ कर देना, दूसरों की सहायता करना, ट्रिगर का पता लगाना, सुधारों को पहचानना, जमीनी नियम निर्धारित करें, सम्मान दिखा रहे, व्यवहार को संशोधित करें, आशावादी बने, स्वयं जागरूक होने, आत्मनियमन प्रदर्शित करें। दिस इज ऑल अबाउट वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज प्रोग्राम ऑफ लम्हे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। I repeat, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। spice.lamhe.vanilla। This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

0: जय जगन्नाथ, नमस्कार।
1: नमस्कार, जय जगन्नाथ। की कोतले कोड कोतले
0: रेडियो लभर तथा जातीय अंतर्जातीय रेडियो श्रोता नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा जिला गंजाम।
1: आज्ञा, केमिति काटिबाकु पसंद करंती संडे?
0: देखंतु संडे जी फंडे तेणु सांग साथी मान मजा मजलिस कर समय काटे भल लगे
1: देखा हुआ। ओके, बहुत बढ़िया कथा, थैंक यू कॉल कर थिबारु। धन्यवाद। नंबर 0671233031 आपण केमिति काटिबाकु पसंद करंती संडे। हेलो
2: हेलो दीदी, नमस्कार।
1: नमस्कार, के कोथले कोड कोथले?
2: मु साई कहूँ बेलपुड़ा।
1: ओके, कौन केमती संडे काटिबाकु पसंद कर?
2: मते तो माने संडे आसिला टिके रेस्ट ना लागो भल लागे तब जे डेलाइट रे उठिबी आउ जे भल आइ छोडियो हबो आउ कोड जति बुला बुली कर

0: करिश्मा दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। नंबर 0671-230-3153 रे कॉल करी परिवे, शेयर करी परिवे जे आपण केमिति काटिबा को पसंद करंती संडे। हेलो
1: हेलो नमस्ते।
0: हेलो
1: हेलो
0: गुड इवनिंग के कोथिले कोडू कोथिले हेलो आपण टिके टिके खोला जागा कासुन आपण कथा बहुत कटु जी। आज्ञा हेलो
1: अरे मैडम सुबह मैडम नमस्कार
0: नमस्कार की कोथिले कोडू कोथिले
1: मो धारित्री कहथिले महांगारो
0: महांगारो कोथिले
1: आज्ञा
0: ओके केमेति काटबा को पसंद करंती संडे।
1: मैडम अमर का हम तो हाउस वाइफ हां संडे तो संडे का मंडे का सब सामान
0: नहीं मु तो कभी संडे बेसी काम पड़े।
1: आज्ञा मैम ठीक है जी अपन
0: नहीं तथापि आपण केबे कोन दिन जे नाय नाय एई थरो को मु किछि करिबि नै अन्य माने
1: संडे संडे गोटे दिन जे कि अपन जा कहिरे अधिक हम काम भी पाइछ हाउस वाइफ मन कर आओ ता सहित भी मन चाहे टिके कोठी बुला बुली कि कोन टिके फ्री टाइम रे से भी मैम ठीक से हेई पारे नै है काम रे तो बिजी रहो आ जीव का। आपण केमती अछन मैम?
0: मु भल अछि आयो आपण भी बहुत भल अछथि।
1: हाँ ठीक है मैम।
0: आज्ञा थैंक यू सो मच कॉल कर थिबारु।
1: थैंक यू मैम। जय जगन्नाथ।
0: जय जगन्नाथ। नंबर 0671-230-3153 रे आपण मध्ये करि परबे कॉल एवं करि परबे शेयर छि केमिति काटिबा को पसंद करंती संडे को। हेलो
2: हेलो
0: गुड इवनिंग को के कोथले कोड कोथले
2: प्रथम प्रेम प्रथम स्मृति पारु नाई केबे भूली लेखुची मो प्रेम चिठी चेई चेई सारा राती आखिर निद को भूली तुम आरंभ तुम इति तुमर चांदिनी राती तुमर प्रीति प्रेयसी आज भी रही चु मो मन हृदय घर करी तुमर अबुला स्मृति। नमस्कार एंड गुड इवनिंग एंड हैप्पी संडे अनेक अनेक विशेष सुधिबा आपन को मो गोपपुर निश्चिंत कहली कटक चंद्रकांत पुष्टि देव स्नान पूर्णिमा अनेक अनेक शुभेच्छा एडवांस आपन को।
0: ओके थैंक यू सो मच आपन को मध्य तबे संडे केमती काटिबा को पसंद करंदी?
2: संडे तो मत बेसिकली टिके मते एंटरटेनमेंट करिया पई मते बहुत भल लगे सेति पई मु टिके म्यूजिक सुने आ संडे रे जे दिना छुट्टी थाए मु बेसिकली एफएम रेनबो सुने मीठा मीठा गीत सुने मते डीजे वाला गीत रोमांटिक गीत भल लगे ता सहित बुलिया पई टिके भल लगे सेति पई मु टिके नईकूल जेंदी जगह थिबो प्राकृतिक सौंदर्य हरा जगह थिबो मंदिर थिबो सेन जे जगह को जाय बुलिया को।
0: ओके बहुत सुंदर बहुत सुंदर थैंक यू सो मच कॉल करथिबारु।
2: नमस्कार
0: नंबर 0671-230-3153 रे आपण मध्ये कॉल करि परबे शेयर करि परबे जे केमिति काटिबा को पसंद करंती आपण संडे। हेलो नंबर 0671-230-3153

0: ट्यून करिशंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक नंबर 0671-230-3153 रे कॉल करी परबे शेयर करी परबे केमेती काटिबा को पसंद करंती आपण संडे हेलो
1: साथे रे आजी
0: हेलो
1: निता पुष्टि गोपपुर नितिनजा कोले काटा करे कहा जी आ टॉपिक ऊपर मैं दे चाहि जे संडे के माने मो बहुत धुमधाम रे मनाओ जी कांगना रविवार तो 8 दिन धरे छुट्टी आ जाय सेथिलाई मंदिर जाय थाय आउ तापरे सांग मान सहित खेलिया सुजोग मिल थाए आउ सब किसी बाहर जगह बुला बुला कर भल लगे भल भल जिन बने की खाया को भल लगे रविवार दिन आसने से मत रविवार आस बहुत भल लगे आउ रेडियो को फोन करने की बहुत भल लगे
0: अरे वाह बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच कॉल कर थिबारु नंबर 0671-230-3153 रे आपण मध्य कॉल करि परबे शेयर करि परबे जे पसंद करंती संडे हेलो
2: जय जगन्नाथ नमस्कार
0: नमस्कार के कोथले कोडू कोथले
2: मु कोथले राजेश नायक फ्रॉम सत्तिका बाजार जगतसंपुर
0: आज्ञा केमिति काटिबा को पसंद करंती संडे
2: जो मानकर जॉब रे अछंती जो मानकर चक्रिया लोक सेमान भाई संडेटा माइनर रखे और हम तो सेल बिजनेस प्राइवेट जॉब फिर भी हम लोग कथा नहीं संडे हो या मंडे रोज का मंडे तेना मु तो प्योर वेजिटेरियन तेना बहे खाई मशरूम फसरूम सादा अरुआ डालमा खीरी खटा मिक्सचर पापड़ पनीर खाई कोड़िया भाया अलसुआ भाया कुंभकर्ण भाया शोक रुए चार्टा बेलू आसिक टपिक शुणी आप कल कैसे
0: ओके बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच।

0: दूरदर्शन दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। नंबर 0671233153 रे कॉल करी परिवे शेयर करी परिवे केमिति काटिबा को पसंद करंथे आपण संडे। हेलो
1: नमस्कार
0: की कोथले कोड कोथले
1: नमस्कार आज्ञा मो राजेंद्र मोना कहउंदी कटक बाजार
0: आज्ञा केमिति काटिबा को पसंद करंथे संडे।
1: हां आज्ञा संडे कोन हमर सबे भक्त माने आथंती सब हमर खेतड़ी डालना कटा पा हमर सिन खाऊ पूरा भेज
0: सब संडे
1: हम पटगुरु लोक आथंती आदि जाय देले
0: हम
1: हमर खेतड़ी हो डालमा हो कटा
0: ओके सब संडे डा हुए ना ई थरो
1: ଖେଚେ।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम
1: नमस्कार। वर्तमान मुख्य संवाद सहित मु लहरिका पटनायक। आकाशवाणी रे आजि 135तम मन की बात कार्यक्रम रे देशवासी को सह भाव विनिमय कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योग दिवस सफलता उपरे कले आलोकपात कहिले स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित क्रूज क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण प्रतिरक्षा क्षेत्र में देशर आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ कर सेसेल्स ठारे राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी और प्रधानमंत्री

0: ट्यून करिसेंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो घर समय वर्तमान संध्या 6:00 बजे 2 मिनट सुनबा भारत मसला प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम कथरे कथरे गीतरे गीतरे
1: जिओ कार्यक्रम रो प्रायोजक हेउछंती भारत मसला
2: आगे नमस्कार आज संध्या रे आपन को साथी रे मु आरजे नळिनी
3: गृहिणी का प्रथम पसंद भारत मसला से पुरुणा सिलवटा मसला रो मजा नियंतु जा देशर सर्वबृहत क्राइजेनिक स्पाइसेस ग्राइंडिंग प्लांट -160 डिग्री सेल्सियस रे प्रस्तुत हुए भारत मसला
4: द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया।
2: श्रोता बंधु ये केमिति मनर केमिति कथा एठी मन कहे मन सुनिबा भितरे भांगी जाइथिबा मन एठी स्वप्न देखे दुनिया भिड़ रे आगो को चलिबा को चेष्टा करे तेणु ये एमिति एक समय रे संजोग एफएम रेनबो कटक रे भारत मसला प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम कथारे कथारे गीतरे गीतरे सबुथर भले आज संध्या रे अछंती आम साथी रे आज रविवार श्री महुली संजरे से भारत मसला रूपक बगीचार माळी सोनसिधा नंदिता पंडा चलंतु आज संध्या रे नंदिता मैडम महोदया केमिति कथा रखिछंती सुनिबा ताहले स्वागत करिबा आज रो कार्यक्रम को सोनसिधा नंदिता पंडा महोदया को
5: संध्या रे मोर श्रोता बंधु मान को अनेक अनेक शुभेच्छा जहा हो आपण माने मन दे कि सब कथा सुनु चंती क्वेश्चन रा आंसर दउ चंती मते बहुत खुशी लागु छी जहा हो माने आम कथा आपण मान को भल लागु छी आपण माने भी किछि आम कथा रु ग्रहण करु चंती सेटा निश्चिंत आम को आनंद दउ छी मु आशा करु छी आपण माने भी आगु को आगे परिबे धैर्य साहस मने रे रखिबे केबे भाबिबे नै जे मु गोटे माने छोटो लोकटे माने आमर परिवार रा आर्थिक संबल नाही आमे उठी परिवार नै ये मनोभाव केबे रखिबे नै 5 टंका ता भी जेने 50 टंका हबो 500 टंका रे पहुचिबो 5000 भी हबो ता पई कि दरकार समय केवल समय को अपेक्षा करिवे कर्म करिवे भगवान को उपरे विश्वास रखिवे एई चिंता जिनिस निश्चिंत करिवे आउ केबे विफल न हेले सफलता रो स्वाद चखिबा केमिति राति नथले दिन हब केमिति राति आउ दिन ये तो दीटा परिपूरक जदि सबुबेले राति होता आउ कण केबे भल लागंता नै ना सबुबेले सकाळ केमिति संध्या टिके हब राति 10टा हब केमिति के बेड को जिबा सारा दिन रो थकापण मेटेया पई ना कण श्रोता बंधु माने भाबुचंती कि मु गप कहउची हेली नाय नाय एमती कथारे कथारे गीतरे गीतरे जेहेतु कार्यक्रम रे आज मत किछि कहिबाकु आमर नळिनी बाबू अनुमति देइचंती तेणु करी मु टिके एमती मो जीवन

0: भारत के सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्लांट भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया।
1: ताहले श्रोता बंधु आज अध्याय प्रश्नटी हेला आज अध्याय स्वयं सीधा नंदिता पंडाकर को कथा आपण मन को छुईला आमको आपणकर कथा लिखि पठेबार व्हाट्सएप नंबर टी हेला 8847862377। तबे गत अध्याय भाग्यशाली विजेता आपण माने निहारंजन नायक पणसपुर बालीचंद्रपुर कटकरु हरेन मंडल किशोरनगर कटकरु एवं आज अध्याय जहांकर कथा आपण सुनुथिले आमर नियमित श्रोता भाई समीर पंडा तेलंगा पेंठ कटकरु आपण समस्तंकु भारत मसला पक्षरु अभिनंदन। ताहले श्रोता बंधु बाकी कथा आरथरकु भारत मसला द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कथारे कथारे गीतरे गीतरे कार्यक्रमरु आज पई आरजे नळिनीकु विदाय दियंतु नमस्कार।
0: भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया।
2: ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥାରେ କଥାରେ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यात्रा पत्राणाम पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्राम न आरभेरन। पश्चिम एशिया देशे सुरक्षा स्थिति तीव्र गत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्। अपि च आईसीसी महिला टी20 विश्व कप स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिला दलम् अद्य लंडन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्ट। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता, यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसंपन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि 40 विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारंभं विदधाति।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षम न्यगादीत यत् अद्य भारतीय संस्कृति विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना संबंधी कार्यक्रमं संबोधितवान्, यत्र INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं

0: का संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल

0: माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपन माने कार्यक्रम सुनचंदी आकाशवाणी कटक केंद्ररु।
2: नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मुं लहरिका पटनायक। समुद्ररु आकाश पर्यंत भारत सुरक्षित एवं आत्मनिर्भरता दिगरे अग्रसर। आकाशवाणी आजि 135तम मन की बात देशवासीको संबोधित करि कहिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, परिवेश कार्यान्वयन स्वच्छ दायित्वपूर्ण समानता उपरे पर्यवसित होबा उचित, सेसल्स नेशनल असेंबली रे संबोधन करि कहिले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को देशर सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान गार्डियन अफ द ब्लू होराइजन रे सम्मानित कला सेसल्स। राज्य रे आज शेष होइछि एसआईआर प्रक्रिया। स्वच्छ निर्भरयोग्य और त्रुटिमुक्त भोटर तालिका प्रस्तुत करिबा एसआईआर अभियान मूल लक्ष्य। राष्ट्रीय पोल्स पोलियो टीकाकरण अधीन आज देशव्यापी टीकाकरण अभियान आरंभ। आसंता मंगलवार पर्यंत राज्य में पोलियो बुंदा प्रदान अभियान जारी रहिबो। आसंताकाली स्नान पूर्णिमा, दुर्लभ गजबेश श्रद्धालु को दर्शन देबे श्रीजीव। पुरी श्रीमंदिर में चूड़ांत पर्यायर प्रस्तुति। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम 65तम जातीय अंतराज्य वरिष्ठ आथलेटिक चैंपियनशिप उद्यापित। आसंता सेप्टेम्बर 19 अक्टोबर 4 तारीख पर्यंत जापान एशियन गेम्स थिला एक गुरुत्वपूर्ण योग्यता पर्याय। भारत आयरलैंड पुरुष टी ट्वेंटी आंतर्जातिक क्रिकेट श्रृंखलार द्वितीय तथा चूड़ांत मैच भारत को गोटे रन में परास्त कर आयरलैंड श्रृंखला विजयी। आईसीसी महिला विश्वकप टी ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता रे भारत को 2 रन रे परास्त कला ऑस्ट्रेलिया। सेमीफाइनल रे परस्पर को भेटिबे ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज एवं इंग्लैंड दक्षिण आफ्रिका। एवं राज्य रे मौसुमी वायु सक्रिय, आसंता गुरुवार सुधा बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना नै पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना। मुख्य संवाद आज पय इतिकी, शुभरात्रि, नमस्कार।

सुन चुंदी आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आरंभ करछु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवत आज शुणंतु यहाँ 78 तम भाग प्रयोजना

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

नई सुबह एक नई उम्मीद की आस, एक नई सुबह एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नई सोच, एक बार फिर आसमान छूने की कोशिश, कामयाब होने की चाहत, सुबह की पहली किरणों के साथ। जी हाँ, सुबह की पहली किरणों के साथ आपकी हम सफर हो स्मृति जुड़ गई है FM रेनबो कटक के प्लेटफॉर्म पर। और यस, इस सुंदर गानों के साथ शुरू हो चुका है आज का शो, जिसका नाम है सुबह सकाळ। सो 7:32 ऑलरेडी हेगलाणी एंड स्मृति को सुनिछंदी आज रा सकाळ रे आपण माने सुबह सकाळ शो मध्य आरंभ हे जाई छी। साथे साथे देबे आज ही होची गोटे बहुत ही सुंदर दिन साथी, आज होची 27 जून। तबे कौन रही आज दिन? यस, अंधार भितर आलोकर संधान आज दिन जीवन में असंभव बोली किछि नाही। जे निज सीमाबद्धता को शक्ति रे परिणत करि पारे से ही इतिहास रचना करि पारे। आउ आज दिन रे गोटे से भली इतिहास रचनाकारी जन्म हेतिला ननादर देन हेलेन केलर। साथी आज दिन जानवा से महान व्यक्ति विषय जहां जीवन कहानी आज मध्य कोटि कोटि लोक साहस एवं आत्मविश्वास देता है। हेलेन केलर जन्म 1880 मसीहा जून 27 तारीख अमेरिकार आलबामारे से जन्मग्रहण करते। मात्र 19 मास वयस एक भयंकर रोग जगू से दृष्टि एवं श्रवण शक्ति को हरई दुनिया तांको पाई अंधार एवं नीरव होई जायतिला सेतबेले किंतु से भांगी पड़ी नथिले। तांको भाग्य तांको भांगी देई पारी नथिला। 1887 मसीहारे तांको जीवन रे आसीथिले तांको शिक्षयित्री एने सुलिवन। से हेलेन को हातरे शब्द लेखि लेखि भाषा शिखेथिले। वाटर शब्दर अर्थ बुझिबा घटनाटी हेलेन को जीवनर एक बड़ मोड़ थिला। आउ सेई दिन ठारु ज्ञानर द्वार खोली जाइथिला। बंधु फ्रेंड्स, एई जो हेलेन केलर को कथा मु आपण मानको कहुछि, एई कथारु आपण माने एतिके बुझि परिबे, तांक जीवनीरु आपण माने एतिके बुझि परिबे जे कोनोसी जिनिस असंभव नहो जदि मन भितरे से करि परिबार शक्तिटी जदि रहिछे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें,

तुमे अस्त हेउथिबा पूर्णमीर चांद आउ मो पाहांती आकाशे तुम ध्रुव नक्षत्र तुमे पंकर क्षेत्रे सज फुटा पद्म आउ मो पाखुड़ारे ढल ढल से काकर बिंदु फ्रेंड्स सुनिछन्ति आकाशवाणी एफएम रेनबो कैटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाळरे आपण सुनिछन्ति आपणक साथ ही स्मृति को अंडई गीतर ताळे ताळे सो मध्य स्टार्ट हो जायछि जार ना होछि मॉर्निंग मेलोडी सो मॉर्निंग को मेलोडियस करिबा पई ओबवियसली मेलोडियस गीत सुनिबा दरकार कारण सकाळ सकाळ जदि निजर फेवरेट गीत आपण माने सुनथिबा मन को छुइला भली किछि गीत आपण माने सुनथि ताले दिन तमाम माइंड बहुत ही मूड बहुत ही खुशी।

0: राजेन्द्र भाई वेलकम करुछु एफएम रेनबो को बहुत दिन परे आपण आम सहित कनेक्ट हेले आमे खोजुतुलु मने मने आपणकु
1: जे बहुत बढ़िया लागा अच्छा नित्य पा सहित कथा हेगली बहुत भिड़ भीतर मो कॉल टे लागी
0: जाई निहाती बाबरे आमे चाहौछु जे आपण माने जो माने सब बहुत दिन हेलाणी कनेक्ट हेइ नांती सेई माने ही कनेक्ट समस्त होवंतु त्या द्वारा समस्त समस्त जोगाजोग गोटे रही परिबो सुंदर भाव तेबे कोहंतु
1: कथा जे जो माने कॉल करछन समान जे ब्रेक नियंते पहला सोता भाई माने टिके सुजोग पा
0: हां गोटे श्रृंखला भीतर समस्त आमे रही पारंते तेबे कोहंतु भाव प्रवणता विषय आज आमे कथा हेउछु आपनको जीवनर से भाव प्रवणता मुहूर्त टी कोन थिला भावपूर्ण मुहूर्त
1: हां ए टॉपिक ऊपर मैं कहबी जे मो प्रथम थोर पई पुरी जाइछली समस्त से महाप्रभु को कथा कहिसलेनी तबे मो कहूछी प्रथम थोर पुरी जाइछली जे आमे दृष्टिहीन लोक माने पुलिस जो आमर रही कर्मचारी तो भिड़ भितर से माने आमको नेकी महाप्रभु को दर्शन करे थिले रतन सिंहासन हम देखी पारिउन बोली हाथ मारिक छुआई देते खुशी लगी से समय आता से नोटिस करी जो मुझे भाविली आज अबड़ा गोटे खाई पारि बहुत भिड़ अच्छे कि आनंद मजा भितर बसिली जहा बहुत बढ़िया लगला अबड़ा तो खाई गोटे अवशेष रही टंकानी दुखर कथा आहा बहुत बढ़िया पुरी से कटिला महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन होगा मुझे बहुत खुशी होती जो मुझे भावि नी के जाइपरि आ गए बड़ सौभाग्य कथा जी से जगह को जीवार गोटे सब बड़ खुशी कथा हूँ महाप्रभु प्रोग्राम कर बहुत सौभाग्य समस्त भाग्य न था बड़दाण्ड में भजन कर भाग्य समस्त भाग्य लेखा न
0: तो सही मुहूर्त टी आपण केबे भी आज पर्यंत भूली बर
1: आगे आगे निश्चित निश्चित ता परे थरो मु बहुत माने डेवलप कर छी बहुत कला लाइन में आगु जाई छी बहुत बड़ बड़ मंच रे कार्यक्रम करै छी
0: अच्छा
1: हां बहुत भयस मिमिक्री पई बहुत प्रशंसित होई समस्त आपा करू
0: अच्छा नहीं सतरे आपण को मिमिक्री वॉइस ता बहुत बढ़िया नटिया वॉइस ता बहुत सुंदर भाव रे आपण करू छंती राजेंद्र भाई एमती कला दिगरे आगु को बढ़ंतु आउरी मा सरस्वती प्रभु जगन्नाथ आपण को कल्याण करंतु एति की कामना करिवो
1: अरे हो हो रोहन नमस्ते सर तुम कथा तो ठीक संबल तो खाली रेडियो स्टेशन भूल रखिल
0: आपण माने भी फटाफट कनेक्ट होंतु 9टा बजे 19 मिनिट ऑलरेडी हेगलानी एंड आज स्मृति आपण मानंको पचारुची जे आपणक जीवन रो सेई भाव प्रवण मुहूर्त टी कौन थिला विभिन्न क्षेत्र रे थाए विभिन्न क्षेत्र रे आपण माने सेई जिनिस टी को अनुभव निहाति भाबरे करथिबे तो जीवन रे तबे आपण माने आम सहित शेयर करंतु फटाफट देखिबा आउ जने कॉलर आसीगलेनी के अछंदे हेलो
2: हेलो शुभ सकाळ सन्ते मैम नमस्कार
0: नमस्कार शुभ सकाळ कोहंतु
2: मो रेडियो सम्राट मुन्ना भाईजान कोटिला कनपुर दावसमपुर कहतले
0: बाबा पर कोन टाइटल फाइटल चेंज कर देले
2: नाही ये हमर दोंडा वळंगा टीम रो सब मेंबर माने दै जने जने प्रफुल्ल प्रधान चैतन्य चांद वासन कटुआ मानिया मंदर जने समीर कटुआ जी से डेलीवरी मैडम ममता सब ना दे मत
0: दे मुन्ना भाईजान
2: रेडियो सम्राट मुन्ना भाईजान
0: बहुत अरे वाह फोन टी कटी गला ओके नो प्रॉब्लम आपण माने पूर्णि थरे आम सहित कनेक्ट होंतु मुन्ना भाई आमे चाहिबो आपणकर कॉल टी आउथरे लागि जाउ तबे देखिबा आ जने कॉलर आसीगलेनी के अछंदे हेलो
3: सोजाडी पारिनु तोरो
0: हेलो नेटवर्क टी प्रॉब्लम रहुची हेलो टोटली सुना जाऊनी ठीक से नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम रहुची की कहू चंती बुझी होनी ओके नेटवर्क प्रॉब्लम रहुची फ्रेंड्स तो आपण माने जो माने भी आम सहित कनेक्ट होउछंती से माने टिके नेटवर्क एरिया को आसी की पूरा पूरी प्रॉपर नेटवर्क रे रही के आम सहित कथा होंतु जहाँ द्वारा कि

0: है मैं।
1: सुन चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छी डायल इन लाइव आपनको साथी स्मृति जोड़ी ही जाई छी अन पजर छी आपन मानको आपनकर सही भाव प्रवणता मुहूर्त टी कोन थिला आपनक जीवन रे देखिबा अजुने कॉल रेसिलिनी किया छंदे। हेलो
2: हेलो सत्यन नमस्कार मैं कॉल डा कटि आइतला
1: निहाती बाबरे जाहु आपन को कॉल लागी जाई छी मुन्ना भाई
2: मतलब लागो कने मु रेडो सम्राट मुन्ना भाई जान माने म कॉल त लागो
1: निहाती तले ठीक अछि मुन्ना भाई कोहन त आपन को जीवन रो से भावपूर्ण मुहूर्त टी कोन थे।
2: हां मैडम मु त मूल सुन देखन म जान सब बड भाव प्रवणता आइतला एटे चलचित्र ऊपर म कह दे समतल समतल दा कहले हां ପାଖାପାଖି ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି ସେଠି ମତେ ଲୋକ କାଦା ହେଲେ କାନ୍ଦୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक

0: ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: म्यूजिकली योर आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को समय वर्तमान 10:00 अलरेडी हो गलानी एंड साथे साथे आरंभ हो गलानी नेक्स्ट शो जार ना होची रेनबो एसएमएस। आपण मानकर बहुत गुडे अनुरोध रगित वर्तमान व्हाट्सएप एंड एसएमएस रे भर्ती सरिलानी सो आपण मानकर रिक्वेस्ट गीत प्ले करैबर प्ले करैबार समय आसीगलाणी। सो चलंतु देखिनवा कौन रही मान फर्स्ट आमर किए रही एसएमएस कर चंद्रकांत पृष्टि गोपपुर निश्चिंत कोइली कटक रु आम सहित कनेक्ट होती हमराज फिल्म रो गीत सुनवाई अनुरोध कर बिल्कुल चंद्रकांत पृष्टि पहुंचाऊ आपण को आपण मनपसंद गीत

क्या बात है बहुत ही सुंदर गीतटी मते बहुत बढ़िया लागिला थैंक यू सो मच एमटा गीत अनुरोध करितबारु तबे हम सहित आ जने कनेक्ट हे चंती आ किछि श्रोता आवाज सेन रोहित सेन दीपक कुमार राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा अलीसा अपा तमन्ना रेड्डी रुचिका राय टाटा स्टील प्लांट रम सहित कनेक्ट हे चंती सुनिया पे चाहि चंती घर का चिराग फिल्म र तुतक तुतक तुतिया लिखले गुड मॉर्निंग स्मृति अपा नमस्कार जय जगन्नाथ अपा ओके सो प्रोग्राम बहुत सुपर हिट थिला बहुत भलो लागिला थैंक यू सो मच बोली लिखी जंती ओके थैंक यू सो मच आपन को कार्यक्रम भलो लागु छी सो पहुचो छी आपन को मन

10:39 ऑलरेडी हेगलानी चलंतो फटाफट नेक्स्ट एसएमएस को देखिबा अमर सहित व्हाट्सएप रे कनेक्ट हे चंती के कनेक्ट हे चंती रमेश चंद्र साहू अहुकमा भापुर ढेंकनाल रो कनेक्ट हे चंती लेखिले ओके लव यू हमेशा फिल्म रे गीत मु स्टॉप कहिले स्टॉप होय भुवनेश्वर ए गीतटी को सुनिया पई चाहि चंती लेखिले गुड मॉर्निंग स्मृति अपा आज आपनकर उपस्थापन सह सब प्रोग्राम्स गुडी का सुनिली बहुत भल लागिला हेले अनेक दिन हेलानी डायलिन चिटचाट को फोन करी करी निराश हेबा द्वारा मो मन टिके दुख हो जाउची सो ए कथा से लेखी चंती तबे थैंक यू सो मच कार्यक्रम आपनन को बहुत भलो लागी छी तबे पहुचो छी आपनन को मनपसंद रे गीता

ओके ओके सो चलन्तु नेक्स्ट एसएमएस अनुरोध र गीत के करियो के पठी चंती माने के सुनिबा पई चाहि चंती जानिबा उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सेक्टर 11 सीडीए कटक रु हम सहित कनेक्ट हेइ चंती लेखले स्मृति अपन नमस्कार सब स्टाफ मानन को नमस्कार सब श्रोता मानन को गुड मॉर्निंग इमोशनल

मुमेंट ए टॉपिक उपरे थिला आज डायल इन लाइव चिटचैट कार्यक्रम कॉल करथिबा श्रोता माने तांकर निजस्व इमोशनल मुमेंट विषय रे जणिले समस्तंको धन्यवाद जणिछन्दि आउ अन्य सेगमेंट रे उपस्थापना ओ गीत भलो थिला सो आपनको ढेर सारा शुभेच्छा शुभकामना थैंक यू सो मच दिल से सो सुनिया पे जाय छथि गपो हेले भी सत चलचित्र रो गीत एई बनर छाई

ओके फटाफट चलंतो देखिबा नेक्स्ट एसएमएस के करिसेंती आम सहित कनेक्ट हेचेंती विजय कुमार दास अस्मिता दास प्रज्ञा एवं बी वंदना सौरी पोस्ट सौरी ओके सौरी पोस्ट मसिंगपुर भाया बहुग्राम डिस्ट्रिक्ट कटक आम सहित कनेक्ट हेचेंती एंड सुनिया चाहिए अभिमन्यु फिल्म र गीत रोही सहित इलिश रा बाहागर गीत टी शुणापे अनुरोध करी पहुंचा साथी आपण मन पसंद गीत

ओके सो समय 10:50 ऑलरेडी हे गलानी एंड आम सहित हमारे साथ और भी श्रोताएं जुड़े हुए हैं बाहर से, मतलब ओडिशा के बाहर से, सब हमेशा सुनते हैं और मैसेज करते हैं। दतरंगी भाटापड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा हमसे कनेक्ट हुए हैं। तुझसे बिछड़ के जिंदा है ये गाना सुनना चाहते हैं, यादों के मौसम फिल्म का, और लिखे हैं जय जगन्नाथ जी, प्रिय आरजे स्मृति मैम जी, थैंक यू सो मच। तो पहुंचाते हैं आपको आपकी पसंदीदा ये ब्यूटीफुल सा गाना।

समय वर्तमान 10:54 तेज रेनबो एसएमएस को राउंड अफ कर टाइम तेज आज शेष वर्तमान रेनबो एसएमएस गोटे शेष अनुरोध रीत निहाती प्ले करी हालू भाई एंड पावर किंग तपन सिया नाठगढ़ आम सहित कनेक्ट होती लिखले जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग अपा नमस्कार आज शनिवार सकाल ऑल आरजे सब श्रोता मान मोर शुभकामना आज आपण प्रत्येक उपस्थापना बेस स्वागत योग्य आज मो पसंद गोटे गीत से शुणा को अनुरोध कर बाबू परशुराम चलचित्र गीत नई कूले मो घर ए गीत शुणापी अनुरोध कर मनपसंद गीत एंड समस्त दिल से धन्यवाद जनाऊँ जो मैंने आमको एसएमएस करर्यर सह शुणी भल पाँच तबे स्वल्प समय भितर समस्त गीत को प्ले करवा तो पॉसिबल नुहे से क्षमा चाहूँगी एंड आपति भल पाऊ था एमती मेसेज करम को शुणु था कहू था 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्मृति को यही दिखती विदाय एंड परवर्ती आरजे आप सहित किसी समय पर जोड़ी ही

ट्यून कुछ जन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेडियो हम सुबह सागर ऐसी पहुंच जाए चा फ्रेंड्स किसी स्वर जहां कान नुहे सीधा सड़क हृदय जगह कर किसी गीत थाए जहां केवल शुणा जाए ना अनुभव करा जाए प्रेमर कथा हो विरहर वेदना हो कि जीवन अनुभूति गोटे स्वर बारंबार आम हृदय को द्वार को आसी ठक ठक करे गीत बदले समय बदले किंतु किसी कंठ एमती थाए जहां प्रत्येक पीढ़ीर हृदय निजर छाप चली जाए आज कलाकार जड़े स्वर जादूगर विषय कथा से आई नुहति वन एंड ओनली अरिजीत सिंह कथा किंतु ता पूर्व शुणा ब्यूटीफुल ट्रैक टी स्टे ट्यून्ड

वेलकम बैक ट्यून कुछ जन म्यूजिक लियो 100.4 अगस्त पण एफएम रेन बकटक दे छे दिल तक रेडियो हम सब सागर छे आपन को सहित सो चलची कलाकार अब कलाकार रे जे में कथा हो छे अरिजीत सिंह का संपर्क रे प्रिंस 1987 मसिया अप्रैल 25 तारीख रे पश्चिमबंग मुर्शिदाबाद रे जन्म नहीं अजित संगीत परिवार रो गोटे अंश थिला छोटबले से शास्त्रीय संगीत रो शिक्षा नहीं और निजर प्रतिभा को निरंतर शाणित कर 2005 एक संगीत प्रतियोगिता रे भाग नहीं से लोकलोचन को आसते जदिव से विजयी हो पार नथिले किंतु निजर स्वप्न को केबे छाड़ी नथिले संघर्ष परिश्रम फलस्वरूप से बॉलीवुड रे निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारिथिले तुम ही हो गीत तंको रातराति लोकप्रियतार शिखर को नहीं जाइथिला यहाँ परे चन्ना मरिया केसरिया रप्ता अगर तुम साथ हो बोली अनेक गीत श्रोतांक हृदय रे चिरस्थायी होई रहिछि

फ्रेंड्स केते गीत आसे केते गीत जाए किंतु किछि स्वर हृदय रे रही जाए आ से स्वर मानक मध्य गोटे स्वर अरिजित सिंह जहाँ गीत अच्छी भावना अनुभूति आ जीवन र स्वर तो फ्रेंड्स।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वेलकम बैक चुनकुच चुन मेज कली हो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दे चलेल तकरे रेडियो हम सफर सागर छ आपन सहित सो चलची किछ कथा किछ गीत प्रिंस जेतबेले मन कहे मु पारिबी सेतबेले रास्ता निजे निजे खुली जाए आम अनेक समय भाव जे सफल लोक मान जीवन में कौन समस्या नाला कि सत्य या जीवन में समस्या थी फरक केवल ये समस्या को शेष बोली भाव नर एक नुआ आरंभ बोली भावी सफलता केवे केवे राताराति आसे ना यह आसे धैर्य परिश्रम एवं अदम्य इच्छा शक्ति फलस्वरूप जीवन गोटे लंबा यात्रा किंतु जो मनुष्य मन भितर आग को बढ़ार इच्छा थाए कौन झड़ के अटकई पारे ना

वेलकम बैक टू कुचिन म्यूजिकल हियर 100.4 आकाशवाणी एफएम 9 बकटक दे चैनल तक रे रेडियो हम सफर सागर अछि आपन को सहित सो चलछि किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स जीवन रे आमे समस्ते केबे ना केबे एमिति एक स्थान रे पहुंचु जेंठर लागे आउ आगु को जीवा संभव नहि केही अर्थभाव सहित लड़े केही रोग सहित लड़े केही विफलता सहित आउ केही निज भितर थिबा भय सहित किंतु जे माने निज मन को कहंती मु चेष्टा जारी रखिबी सेमान पई रास्ता धीरे धीरे खोलिबा को लागे कारण विजय सबुबेले शक्तिशाली मनुष्यर ही होइथाय विजय सेही मनुष्यर हुए जे हार मानिबा को हार न मानिबा को मना करे प्रकृति मध्य आम इच्छा शक्ति को शिक्षा देथाय एई जेंती नदी के देखंतु तार रास्ता रे केते पत्थर आसे केते बाधा आसे किंतु नदी केबे हेलेबी अटकी जाए नाही केबे पत्थर को काटी केबे बाट बदलाई केबे केबे धीरे धीरे से निज गंतव्य रे पहुंची जायथाय जीवन रो बाधा आमको सेई परि बाबू को भयबक पड़िबो बाधा आसिले रास्ता बदलाई जाई परिबो किंतु केबे हेलेबी आमर लक्ष्य रु विचित हेबा उचित नुहे आउ एटा हेउछि मनुष्यर इच्छा शक्ति

वेलकम ब्याक टुनको चुन म्युजिकल हो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक देश दल तक रेडियो वन सुपर सागर अच्छे आपण सहित सो चलची किछ कथा किछ गीता

वेलकम बैक चुन को चुन बेच के लिए और 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकटक दल से दिल तक रेडियो वांस पर सागर अच्छा अपन सहित सो चलची मदेश आमो देश रे आज हमें कथा होचे साहित्य एवं स्वाधीनता आंदोलन से संपर्क रे फ्रेंड्स स्वाधीनता संग्राम रो कथा उठले आम मन को आसती।